0: कॉन्शियस एफएम।
1: पहला पहला कदम जब चलते हैं हम, उंगली थामे कोई, लिख रहे हो ना, यूं मेहरबा प्यार का आसमां, कौन है वो यहाँ बता दे कोई, तुम भी गाओ।